क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों अज आपां मैं लभ के रखे सी इह दो ओह तुहाडे रूबरू कीते आ, शुक्रिया तुहाडा वी, धन्नवाद। सो आपां अगले प्रोग्राम वल चलदे आ, इक अद्धा गीत कोई होर सुनदे आ, अपने को 10 मिनट पए आ, उस तो बाद आपां खबरां वल चल जाणा। ते लो जी फिर आपां इसे चाल च ही रखिया जावे है ना इस प्रोग्राम नूं। लो जी मनमोहन वारस।

0: ब्राह्मण तेरे मुल्ला काली
1: बारी आ जाए जी अकबर बादशाह जी जट नाल केड़े जवाब करदा है हला पुत्र बूटिया तुम्हारा नहर कोटी दिया पुत्रा मेले फेर बरा दे

कमरों तो आई ओ चिट्ठी पकड़ के आंखें चीते भी पाई मारा लुटा तन कर दिया चिट्ठी जिद लाई के नलुआ जंग जूझदा कर दिया चढ़ाई।

कि अब दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए। न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आज जहां के पार हो जाए।

कमाल कर देती जी, कमाल कर देती, क्या बात है, सो ब्यूटीफुल, बहुत वधिया आवाजां दे विच इहनूं पेश कीता गया। एक होर हंसराज रंजीत बाबा ते कमल खान ते सोनू ते कईआं दे नावां ते इह वी इदां दा ही इक गीत है, बहुत प्यारा, जिहदे विच काफी कलाकारां दीआं आवाजां नूं दित्ता गया जी। इहनूं वी सुणदे आ जी, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है, बस एक मिनट दियो।

क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। दोस्तों अज आप मैं लभ के रखे सी ए दो ते रूबरू किते है, शुक्रिया ताडा भी धन्यवाद। सो अपा अगले प्रोग्राम वाल चलते हैं, एक अद्धा गीत कोई होर सुन दे, अपने को 10 मिनट पे है, उस तो बाद अपा खबर वाल चल जाना। ते लो जी फिर आप इसी चाल ची रखिया जावे है ना इस प्रोग्राम नो जी। मनमोहन वारस